आनंद कंद श्री सच्चिदानंद भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम चित बोलिए श्री आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज़
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज बाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुलाई 26 तारीख श्रावण 10 गते आइतबार द्वादशी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

राजा नौशका इशारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाय नहीं परे का घरे मंडाखुन सवाले दुर्योधन समान कर्ण समान दानमा।

कृष्ण जी को बत्तीसे दन्ता दन्ता छोड़ी जाँदैन मनन्त दन्ता छोड़ी जाँदैन मनन्त दन्ता छोड़ी जाँदैन मनन्त नेपालमा

उल्टा पानी परो पीपल को पता राम को औठी सीता को आतामा राम को औठी सीता को आतामा राम को औठी सीता को आतामा कृष्ण जी को दयालु मनात दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को बत्तीसे दन्त दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त दन्त छोड़ी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को

केशर कागेश्वर बागेश्वर फनल मणेश्वर पाटन कुम्भेश्वर सुनकोटी शर्मा रहे कि भ्रिंगेश्वर लेले मतिलेश्वर जय गर दर्शन प्रभु करुण छलिला उनै को चल्दैन चोर प्रभु विषय अरुका कुनै को।